जनाब फेसबुक लाइव के ऊपर जो जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब उन सबको ढेर सारा वेलकम। शाहजेब हमारे साथ फेसबुक लाइव के ऊपर मौजूद हैं। जीएम साहब टांक वाले, हाँ जी टांक वाले, जो टांक में पहले रहते थे अभी डेरा में आके यहाँ पर प्रोफेसरी कर रहे हैं, सुनो उनको वेलकम। चाय के साथ चाय का कप उन्होंने सामने रखा है जनाब, कहते हैं चाय के साथ किशन का ठीक ठाक। उसके साथ जो है आरजे निसार हुसैन भी हमें सुन रहे हैं। निसार को आपके हमने समातों की नजर करना है लेकिन हमारा सेटअप सही नहीं हो पा रहा, अदरवाइज आपको हमने पश्तो में केसन को बताना था कि पश्तो में जब केसन का प्रोग्राम चलेगा तो फिर आपको कैसे समझ आएगी। एनी हाउ जब तक जो है आप मेरी बातों को समझिएगा, तो केसन वो वाहिद कंपनी है भाई जिसने जाफरान से भरपूर साबुन भी बनाया है और जाफरान से भरपूर क्रीम भी बनाई हुई है। जाफरानी क्रीम भी केसन की है, जाफरानी सोप भी। ये टांक वालों को जो हम फ्री में साबुन दे रहे हैं भाई, इसको हल्का मत लेना जनाब। ये सबसे महंगा साबन है केसन का, 250 रुपए का, छोटा भी है, साइज में भी छोटा है, 70 ग्राम का टोटल, 70-75 ग्राम का साबन है, लेकिन ये छोटू है लेकिन है बड़ा धमाका। इसको आप इस्तेमाल करेंगे, ये हम फ्री दे रहे हैं। 1000 की जो चीजें टांक में खरीद रहा है भाई, उसके साथ एक साबन और परफ्यूम फ्री हम दे रहे हैं। ये टांक वालों के लिए बिस्मिल्लाह ऑफर है जो हमने इंट्रोड्यूस कराई हुई है। तो केसन के ये दो प्रोडक्ट भाई, क्यों हमने जाफरान की क्रीम और साबन बनाया? अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला औरतों का, ये जब से क्रीमी बनी है ना, रात वाली क्रीमें जो बनी है, इसके अंदर एक बड़ा जो नुकसान खवातीन ने हासिल किया है वो ये हुआ कि जनाब खवातीन के चेहरों के ऊपर ना बाल आना शुरू हो गया। ठीक है जनाब, ये किस चीज की निशानी है? ये निशानी है जब आप कोई ऐसी क्रीम इस्तेमाल करते हैं कि जिसके अंदर नुकसानदेह केमिकल होगा, तो उसका इफेक्ट ये होगा कि आपकी स्किन तो व्हाइट हो जाएगी लेकिन आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा बाल आना शुरू हो जाते हैं। खवातीन की मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत बुरे लगते हैं, जिनको हम कहते हैं अनवांटेड फेशियल हेयर। ठीक है जनाब, और अब इसके लिए ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है जनाब, कि चेहरे के ऊपर जो है गैर जरूरी अनवांटेड बाल का आ जाना। अच्छा, अब इसका हल कुदरती तौर पर क्या है? ठीक है जनाब, कुदरती तौर पर इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं बालों को हटाने के, लेकिन कुदरती तौर पर इसका जो हल है ना वो है जाफरान। ठीक है जनाब, स्टडीज शो करती हैं कि जाफरान के अंदर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं कुदरती तौर के ऊपर जो चेहरे पर मौजूद बाल उगने की जो रफ्तार होती है वो उसको कम कर देते हैं। ठीक है जनाब, एम्बिड करते हैं, EMBED इसका एक लफ्ज यूज होता है, एम्बिड करता है। ठीक है जनाब, जाफरान आपके चेहरे के ऊपर बालों को एम्बिड करता है। ठीक है जनाब, ग्रोथ को बहुत स्लो कर देता है या फिर बिल्कुल ही खत्म कर देता है। तो केसन जाफरानी क्रीम भाई उन खवातीन के लिए बहुत जरूरी है कि जो ये चाहती हैं कि वो कुछ भी ना करें और कोई ऐसी चीज रेगुलर इस्तेमाल करें कि उनके बाल इससे एक तो फेड होंगे, उनका कलर फेड होगा, फेड होते जाएंगे। आप जाफरानी क्रीम इस्तेमाल करेंगे, आपके चेहरे के ऊपर जो गैर जरूरी बाल हैं वो फेड होते जाएंगे। ठीक है जनाब, इसके रेगुलर इस्तेमाल से वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। केसन जाफरानी क्रीम की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल, ये जाफरान के बेनिफिट्स हैं। अच्छा, एक तो ये बड़ी वजह थी, इसकी ये खूबी बहुत जबरदस्त है जिसकी वजह से हमने जाफरान को अपनी क्रीम के अंदर ऐड किया। दूसरी बड़ी वजह जो अक्सर लोग कहते हैं, खवातीन कहते हैं कि जब हम क्रीम इस्तेमाल कर रही होती हैं तब तक तो मामला ठीक होते हैं, लेकिन जैसे क्रीम छोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद मामला खराब हो जाते हैं, यानी कि फिर से चेहरे की रंगत खराब होने लगती है। तो ये क्या वजह होती है जी, ये क्या वजह होती है? आप मैं पहाड़पुर वालों को ये वाली बात बहुत दफा समझा चुका हूँ, लेकिन ये जो कुछ बातें मैं बार बार जो कर रहा होता हूँ ना, वो टांक वालों को समझाने के लिए भाई। ठीक है जनाब, तो जिन लोगों को पहले से समझ आए केसन जाफरानी क्रीम की, वो थोड़ा सा खैर मेरी बातों को बर्दाश्त किया करें। आप कह रहे होंगे भाई पहले भी ये 10 दफा में बता चुके हैं, आज फिर भी बता रहे हैं, तो ये नई पुरानी बातें जो हम बार बार मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ वो टांक वालों के लिए होती हैं। ठीक है जनाब, ताकि उन लोगों को भी समझ आए कि भाई केसन कैसे पढ़ाती है हमें और कैसे बताती है कि भाई स्किन केयर प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट को कब और किस वक्त इस्तेमाल करना है। सो जनाब, ये जो प्रोडक्ट है हमारी, बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ये हमारे माहौल के अंदर ना ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है कि ऑक्सीजन से चीजें जो है ना मुतासिर होती हैं, ऑक्सीजन से चीजें भी मुतासिर होती हैं, ऑक्सीजन से माहौल के अंदर ऑक्सीजन हर वक्त मौजूद है ना, तो ये गैस है एक। ठीक है जनाब, इससे चीजें मुतासिर होती हैं, इससे स्किन भी मुतासिर होती है। चीजें कैसे मुतासिर होती हैं? आप लोहे को रख दें ऐसे, ठीक है जनाब, आपके घर में अभी आप देखें आसपास कहीं लोहे का कोई टुकड़ा पड़ा होगा, देखें तो लोहे के ऊपर क्या है, जंग आया पड़ा होगा।
ये क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है जनाब। हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो मुतासिर हो गई, वो उसने उस चीज को खराब कर दिया, यानी कि वो लोहे के ऊपर जो है जंग आ गई। लेकिन अगर लोहे की कोई और चीज आपके पास पड़ी हुई है और उसके ऊपर स्टील चढ़ा हुआ है, या स्टील है या निकल चढ़ी हुई है, तो उसके ऊपर जंग नहीं होगा। ये उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने वाली चीजें होती हैं। सिंपल अल्फाज में, अगर आपके कमरे के अंदर दो चीजें पड़ी हुई हैं, दो गार्डर पड़े हुए हैं, TR पड़े हुए हैं, एक के ऊपर रंग हुआ पड़ा है, एक के ऊपर रंग नहीं हुआ पड़ा है, एक के ऊपर पेंट हुआ पड़ा है, एक के ऊपर पेंट नहीं हुआ पड़ा है, तो जिसके ऊपर पेंट नहीं होगा वो जंग आलूदा हो जाएगा, जिसके ऊपर पेंट हुआ पड़ा होगा वो बहुत ही प्यारा रहेगा। तो वजह क्या होती है, वजह क्या होती है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये ऑक्सीजन जो हवा के अंदर मौजूद है वो चीजों को इस तरीके से खराब करती है। ये सिर्फ चीजों को खराब नहीं करती ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये इंसान की स्किन के साथ भी होता है। ये आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बों का आ जाना, झुर्रियों का बार बार आ जाना, ये उसी प्रोसेस का हिस्सा होता है। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप बोल रहे होंगे कि हम भी पेंट करें चेहरे के ऊपर, मास्टर पेंट टोकन वाला या कौन सा, या फिर ब्राइटो पेंट? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। ये चीजें जो पेंट है, ब्राइटो पेंट है, मास्टर पेंट है, ये लोहे के लिए है, इन चीजों के लिए है। आपके चेहरे के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर ये ताकत होती है, जो पेंट के अंदर होती है ना, यही ताकत उन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर भी होती है, जिनको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है जनाब। अब जिस भी प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होगा, जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे और स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट से बनी होगी, तो आपकी स्किन बहुत जल्दी फिर से खराब नहीं होगी, ठीक है जनाब। आप छोड़ भी देंगे फिर भी खराब नहीं होगी। तो बहुत दूसरा बड़ा एज था वो यही था कि भाई लोगों को ये कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि भाई क्रीम खत्म हो गई तो चेहरे का रिजल्ट लौट आया। रिजल्ट नहीं लौटेगा जब आप केसन की जाफरानी क्रीम और केसन का जाफरानी साबुन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जनाब। ये दो चीजें मौजूद हैं जनाब। आप मेरी आवाज इस वक्त जहां भी सुन रहे हैं, आप मुझे पहाड़पुर में सुन रहे हैं, आप मुझे डेर इस्माइल खान में सुन रहे हैं, या आप मुझे टांक में सुन रहे हैं, हम बात बात में कर रहे हैं, पहले हमारी ये प्रोडक्ट आपके इलाके में पहुंच चुकी है। यानी कि अगर आप भी थक चुके हैं ऐसी क्रीमों से जो कि बार बार अपना रिजल्ट खत्म कर देती हैं, ठीक है जनाब, क्रीम के इस्तेमाल के बाद आपकी, तो जनाब इस मर्तबा ट्राई कीजिएगा कुदरती तौर पर नेचुरल, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपकी स्किन को खराब नहीं होने देगा, जो आपके स्किन का जामिन है। और मैं आपको कहता हूँ कि जो केसन का जाफरानी साबन है, जाफरानी साबन भाई, ये मुहाफिज है आपके चेहरे का, 100% ये मुहाफिज है, और इसके कितने सारे फायदे हैं, ठीक है जनाब। अभी आप लोगों ने मेरे टांग वालों से मुखातिब हूं, मेरे प्रोग्राम अभी आप लोगों ने सुने नहीं है, ठीक है जनाब। हम एक एक घंटा अपने साबन के ऊपर बोलते हैं, क्योंकि केसन के साबन इतने ही क्लासिकल हैं कि हम कहते हैं कि जब आप साबन सिर्फ इस्तेमाल करेंगे ना, आप यकीन जानिए कि आपको क्रीम जैसा रिजल्ट मिल रहा होगा। स्पेशली जब मैं बात करता हूँ जाफरानी साबन की, जब मैं बात करता हूँ केसन के मिल्की सोप की, जब मैं बात करता हूँ केसन के राइस शाइन सोप की, जब मैं बात करता हूँ केसन के कोजिक एसिड की, जब मैं बात करता हूँ केसन के उपटन सोप की, गेटिंग द डेटा, तो जनाब ये सारे वो प्रोडक्ट हैं सामिनी किराम, जो सोप हैं जो अपना अपने अंदर कमाल रखते हैं। अब अगर मैं मुख्तसर तौर पर आपको बताऊँ कि ये कितने कमाल रखता है, जाफरान से बनी हुई कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अब सोच रहे होंगे ना, मैं अगर साबन ले लूं तो जाफरानी साबन के कितने फायदे मिलेंगे, जाफरानी क्रीम ले लूं तो कितने फायदे। तो सुनते जाइए कि गिनते जाइए कि 6 फायदे हैं, 6 बड़े फायदे हैं जाफरान के जब आप इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, आपकी स्किन वाइट होना शुरू हो जाएगी। स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है केसन का जाफरानी फार्मूला, चाहे साबन है या क्रीम। दूसरा, एक्नी कंट्रोल, बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक्नी कंट्रोल है, ठीक है जनाब। गो पिंपल भी हमारा एंटी एक्नी है, ठीक है जनाब, वो मेडिकेटेड प्लस नेचुरल है। लेकिन आप ये कहते हैं कि टोटली मैंने अगर 100% नेचुरल चीज को यूज करना है, तो केसन का जो गो पिंपल साबन है वो एंटी एक्नी है जनाब, ठीक है जनाब, क्योंकि इसके अंदर जो हल्दी इस्तेमाल की गई है एंटी बैक्टीरियल जो है खसूसियात। संदल इसके अंदर मौजूद है। मैं क्यों कहता हूँ कि गर्मी के अंदर भाई ये साबन हर किसी के घर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जनाब जब बाहर आप निकलते हैं तो आपकी स्किन झुलस जाती है, ठीक है जनाब, हीट से झुलस जाती है। लेकिन घर आकर जब आप साबन से, जाफरानी साबन से अपने चेहरे को धोएंगे तो आप अपने चेहरे के अंदर एक ठंडक सी महसूस करेंगे। अच्छा, चौथा इसका फायदा है एक्सफोलिएशन, यानी आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे मौजूद हैं, ये ऊपर से जेंटली तौर पर
एक तो होता है ना कि क्रीम इस्तेमाल करें तो जनाब आपके चेहरे के ऊपर रेडनेस आ जाती है, सुर्खी आ जाती है, वो इतनी शिद्दत किस्म की एक्सफोलिएशन होती है कि भाई आपकी दाग धब्बे तो उतारते हैं ऊपर से चमड़ी भी उतार देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये जो सोप आप इस्तेमाल करेंगे तो ये डेड सेल्स को भी रिमूव करेगा, जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है जनाब, और स्किन को डैमेज से बचाएगा, बैरूनी तौर पर इसको कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। और छठा फायदा, इसके अंदर चूंकि जाफरान और संदल है और साथ में हल्दी है, बहुत ही प्यारा नेचुरल ग्लो आपको मिलता है जब आप इस्तेमाल करते हैं केसन का जाफरानी सोप या केसन की जाफरानी फार्मूला करें।

0: कबूतरा
1: जी जनाब, केसन के बहुत सारे प्रोडक्ट और हर रोज जो कहानी होती है वो जनाब आप लोगों को हम बताते हैं कि कुदरत के कितने अनमोल खजाने भाई हम प्रोडक्ट्स की सूरत में तैयार कर चुके हैं और आप लोगों को पेशे खिदमत हम पेश कर रहे हैं। जनाब इस वक्त फर्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम सर, जी खैरियत है?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सही नान से सोपड़ा से लाड कोल पहाड़ पूरे फिल्म को सुन दे पे वैसे ही जी जी हुक्म जनाब ज़ाफ़रानी क्रीम इस्तेमाल करनी है ते दिन दे वक्त यानी कि दिन दे टाइम को ब्यूटी स्प्रे इस्तेमाल करने केसन आला।
2: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि छाइया बाजूकात खत्म थी वेंदन लेकिन छाइया जरे वापस आने तो उनकी वजह ये होती है कि तुसा रात दी ट्रीटमेंट तक रहंदे हुए लेकिन दीन को कोई शय भी इस्तेमाल नहीं वेख रहे। दीन को सनब्लॉक टाइप शय इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होती है, सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी जरूरी होती है। जरे तो ब्यूटी स्प्रे मिलती है जल ये को इस्तेमाल करे सो तो इनशाला जरे छाइया खत्म थी वैसे वला के वापस ना आसन बिल्कुल

0: ठीक है।
1: अच्छा
0: बस उमर पीता करो ना, पहले गुस्से करने को पहले पी खड़ दे, वे बाद में पी नहीं वे सकते, उमर पीता करो जल्द गुस्सा आवे तो। ठीक है सही जाफरानी फॉर्मूला क्रीम मौजूद है अपने रंगपुर अड्डे ते वंजो हसीब जनरल स्टोर को आखो के भाई खलील भैया ली जाफरानी क्रीम दियो जेरी छाइयां को बिल्कुल खत्म कर देंदी है। ठीक है साईं
1: जी,
0: बहुत शुक्रिया। और ये जो भाई मसला बता रहे थे ना, ये बहुत ही रेयर है कि एक दफा छाई जब चली जाती है तो वापस क्यों आती है। इसकी वजह ये होती है, इसकी वजह यह है कि बहुत सारी क्रीमें आपकी छाइयां खत्म कर देती हैं, लेकिन उसके बाद उनका काम तो खत्म हो गया ना, क्रीम का काम खत्म हो गया कि उसने आपकी छाइयां खत्म कर दी। अब उसके बाद आपके हाथ में है कि आप क्या करेंगे। ठीक है जनाब, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि जब आप क्रीम इस्तेमाल कर रहे होते हैं छाइयां खत्म करने वाली रात के वक्त, तो दिन के वक्त आप जरूर सनब्लॉक टाइप यूज चीज यूज करेंगे। ठीक है जनाब, जैसे केसन की ग्लूटावाइट क्रीम है या केसन का ब्यूटी स्प्रे है, आप हमारी जफरानी क्रीम के साथ दिन के वक्त दो दफा स्प्रे का चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करें, रात को क्रीम लगाएं, हम गारंटी देते हैं कि छाइयां वापस नहीं आएंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, जी अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम जनाब, क्या हाल है?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अपना नाम से सुसैन छीने कुल सादे के लिए छीना पंजाब साइड से सही
2: जुगाड़ी
0: पे कितने लोगों को मेरी गालियां दी समझ आंदी पई होसी? 100 दे विचू
2: 40% को आंदी पई, क्योंकि स्पष्ट है तसरे की भी है ना, सारे इलाके तसरे की है ना।
0: अच्छा, यानी कि तू सादे वे कि 100 दे विचू सिर्फ 40 बंदा को मेरी गालियां दी समझ आंदी पई होसी, सेट दे दिमाग दूतू वेंदे पई होसन मेरे गालियां।
2: हां जी, स्पष्ट वाले खास तसरे की समझ नहीं आंदी, मैं कह के आवे लिखे कोई नहीं आंदी।
0: अच्छा, क्या को नहीं आंदी? सरे की कुछ लोग जरे नो सारे गालियां को अच्छे तरीके से समझने पई होसन
2: जी। सरे की वाले तो सरे की तरह हो दवे जो समझ आंदी, हुन पछतो होवे तो पछतो ने पछतो समझ आंदी, बस आप ही आंदी काए गाल दी काए दी नहीं आंदी।
0: अच्छा जी, कॉल कीती तो पहली गाल के सब वेलकम आदे अपने प्रोग्राम दे विच, ते क्यों कॉल कीती आई तो समझा?
2: मेहरबानी का शुक्रिया ते गाल नहीं जे वने ना बने किंदे पर उसका दे मैं कहे शिरकत करूं तो शिरकत करे ना रुपए फ्री मजा आवे।
0: अच्छा चलो, अच्छी गाल, यानी कि सारा प्रोग्राम तो को बोर नहीं करना पे, मजा आना पे तो को?
2: नहीं,
0: पीती हाले तक शिरकत की। बहुत शुक्रिया जनाब, हमारे साथ मौजूद थे चीना से और 88.8 रेडियो अमन से। आप कोई डेरा से आ जाए भाई, डेरे वालों किधर सोए हुए हो यार? आप लोग देर से उठते हैं मुझे लगता है ऐसा यार। पाटपुर वाले 3 बजे उठ जाते हैं, टांग वाले 2 बजे उठ जाते हैं, और डेरा वाले वेकअप। जी जनाब, एक और कॉलर जी हमारे साथ है, और बहुत ही कीमती कॉलर इस वक्त हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कैसे नजर? अच्छा कीमती आ गए, कीमती बंदे को कीमती आग सो यार, है जी? बस हम अंदर से गालियां, बाहर तो नंगी दिखो रहे, वो तो सही नवाज शरीफ की घर भी इज्जत नहीं होती जी, मैं बाहर होती है घर वाली इज्जत की गाल ना करो, घर तो साहब वो जनरल जरा हो ना सारा मुल्क का उन्दी भी नहीं होती, वो कैसे है वो बाहर आने वास्ते जनरल करने सारे वास्ते तो कुछ है नहीं।

0: सुनाओ, क्या रात हम सुन दे पे वैसे ही पहाड़पुर की वे कोई सेट नहीं है तुम्हारे पास? पहाड़पुर की आवाज सेट सही है कुछ? अच्छा, पहाड़पुर ही सेट थी गया, ठीक है जनाब। बस बात ही खाऊ खाते त्रे त्रे खर्चे की थी पै हिके ते आऊं चलो ठीक है सबको हाल हवाल दी वैर आंदे
1: बात मेहमान से आवे नहीं नाराज नती
0: है। अच्छा नाराज नती मन भाई, हुन पहाड़ पूरी पहुंचा वदा हूं साइड ते
1: साहब ने शेर मान ऐसी भी कुल खरीद को रास्ते ले ले वाला सही रहमान थी
0: है सही रहमान थी के सारे रिस्क की लात मार वाला है।
1: आपने आपने सादे गली को आसा सादे गली सदा चक्कर के रहते
0: जैसी चोरी करेंदे मखलूक तक पहुंचा घिन वो पूरी इजाजत ही सारे माहरीन सारे माहरीन बेचारे जंगलां दी वधे होंदे टुरदे फिरदे केरा पत्ता ते केरा अर्क घिन के वंजू डेरे लांदे वास्ते टांक लांदे वास्ते पहाड़पुर लांदे वास्ते कि उन्हें बहुत सारी शिफा होवे ते असां कामयाब थी वने एक ऐसी शै गोल के घिन आने जेडी के बिल्कुल अल्लाह पाक दे फजल ते करम हुंदी शिफा हुंदी है ते ओ तुहाकू रिजल्ट देंदी है शै
1: जी ते वी सारे गिरा होए वी आसा गोट मिल्क सोफ्टी इस्तेमाल जरूर करे ने मैं आप दूवी दुखते फिरदा वदा छैया दै देवी हो सें जे मुंह तेरा ही रुका रुका लगती तेरे मुंह ते रण पा वर्तन जी में बारा की वे ने के जमीन के रण का
0: हाय हाय हाय क्या बात है यार वो सियाना सी गया यार
1: सेकुर
0: जी बहुत मेहरबानी शुक्रिया जनाब।
1: कैसन तो है रण का कैसन तो गेरी खैर को सर फ्राइडे को हाथ लाते अपने नाल को इस्तेमाल करना वो कुल तेरे चेहरे पे रण करण का कर देंगे
0: रण के रोना कर दे से बहुत मेहरबानी
1: सही है। इंडिया हाज में अरे जेरी फकी है और चर्बी को घट करे नहीं है तो बंदा अपने आप भी ताकत है तो जे लोग फकी इस्तेमाल करें तो बंदे तो जे चर्बी खत्म थी जे वजूद बराबर थी ने हां सब थी वर दे रण का वजन जान
0: रण का वजन जे ले घट थी बंदा सोख
1: मेरी बार केरे प्रोडक्ट में रावण सिंह का छोड़ ना बचे मुख पर भी प्रोडक्ट जे सिर्फ नहीं मुक दिया
0: सिर्फ नहीं मुक दे बिल्कुल सही बहुत मेहरबानी सही शुक्रिया बहुत मेहरबानी सही दुरमान हमारे बहुत ही पुराने यूजर।

0: जी जनाब, एक और कॉलर है हमारे साथ, उन्हें मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: जनाब जनाब जनाब, कौन है हमारे साथ, नाम बताइएगा। आवाज तो ये टांग के आसपास से मुझे लग रही है।
1: टांग दे विच
0: पै। अच्छा, टांग दे विच वाले ने पै वे। नाम से सो अपना अब्दुल हादी तनी वे।
1: वो तो है आवाज
0: तो नंबर नंबर नंबर नंबर है तो आवाज सना धोखे।
1: मैं क्या खलील भाई?
0: जी जी, शुक्र है जी, ठीक ठाक। तुसा वला के कॉल करो, उसे नंबर दे तो वला के साथ गाल करो। ठीक है जनाब, आवाज इथे कट दी। जी जनाब, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब 03449363366। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं केसन के, और ये जो प्रोडक्ट जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, जाफरानी फार्मूला साबन और क्रीम दोनों है जनाब, और हर जगह आपको मिलेगी, जहां पर भी जाएंगे आपको मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: जनाब क्या हाल है मोहतरम, वेलकम करेंगे, नाम बताइएगा अपना।
1: हाँ
0: जी मास्टर फतेहुल्लाह साहब, कैसे हैं? ठीक हैं आप, खैरियत से हैं? प्रोग्राम सुन रहे हैं स्टार्ट से?
1: कल से मैं
0: अच्छा कॉल कर रहे थे आप शो में। आज आपकी आवाज की हमें समझ थोड़ी नहीं आ रही, थोड़ी सी जगह चेंज करेंगे, सिग्नल का मसला है आपकी तरफ। अभी थोड़ी सही आ रही, क्या कह रहे थे कल? मैंने क्या पहले जो बातें आपने की है ना, वो मुझे तो समझ नहीं आई, क्या किसी और को समझ आई हो?
1: मैंने कल मैंने प्रोग्राम सारा सुन लिया था आपका।
0: अच्छा अच्छा, प्रोग्राम सुना था आपने, ठीक है।
1: हाँ
0: हाँ, न्यू खान
1: उसकी बात
0: न्यू खान तो बड़ा दस बंदा है हमारा, और हमारे सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल भी करता है, लेकिन चाची के ख्याल नहीं रखता ना मेरे, इसके साथ उसके ऊपर बड़ी लड़ाई होती है। वो चाची का ख्याल नहीं रखता, वो कहता बस वो अपना ख्याल खुद रखे, अब हम बूढ़े हो गए। मैंने कहा बूढ़ी है, शिफा है दर्द उसको लेकर दो, हाजमा कंट्रोल उसको लेकर दो, उसे अपनी गर्दन की पड़ी हुई, मेरी गर्दन में दर्द है आजकल।
1: अच्छा
0: शुक्र है अल्लाह का। अच्छा जी, आज हमने मास्टर साहब आज हमने एक और चीज बताई है जो लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ब्यूटी क्रीम और अच्छा साबन। तो ये हमने जो बनाई है ये बहुत ही मुख्तलिफ क्रीम है, जाफरान से बनी हुई है। आप पढ़े लिखे इंसान है तो आपको पता होगा कि जाफरान कितनी जबरदस्त चीज है, इसके बहुत सारे फायदों के बारे में आपने भी सुना होगा। आपने भी जाफरान के बहुत सारे फायदों के बारे में सुना हुआ होगा। मैंने कहा तो ये स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छी है, तो आप पढ़े लिखे बंद हैं तो आप भी लोगों को मैसेज दिया करें कि स्किन की रेनोवेशन के लिए, स्किन को प्यारा रखने के लिए नेचुरल चीजें यूज करें, जाफरान से बनी चीजें इस्तेमाल करें, ताकि उनको तादेर फायदा मिले चीजों से।
1: इंशाल्लाह
0: ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, क्या कह रहे थे आप? हाँ, जाफरानी साबन भी है, जाफरानी क्रीम भी है। ठीक है जी,
1: हजार रुपए की क्रीम कर रहे
0: हैं। हाँ
1: हाँ,
0: 1000 रुपए की खरीदारी करेंगे तो एक जाफरानी साबन फ्री मिलेगा, एक साथ में परफ्यूम फ्री मिलेगा। नहीं वो उनको नहीं नहीं वो उनको हमने मुजीब भाई को बता दिया, उनको हमने अच्छा। बिल से जो जो भी जिनको भी एक एक चीजें दी है ना, आप अगर वापस जाएं तो आपको दूसरी चीज भी मिल जाएगी, वो भूल गए थे। ठीक है ना, आप वहां पर जाएं तो उनको हमने बता दिया कि हमने उनको इतनी चीजें फ्री भेजी हुई हैं, उनको गिनवाई हैं, उनको उन्होंने चेक किया तो फिर उन्होंने कहा चलो ओके ठीक हो गया, आप दो चीजें देंगे, वो भूल गए थे, उनको पता नहीं था। ठीक है जी, बस दो चीजें आप वहां पर जाएंगे तो इंशाल्लाह दो चीजें मिलेंगी। अच्छा जी, ये उनसे मिस्टेक हुई थी जो हमने टांग के अंदर ऑफर दी थी ना आप लोगों को, उसमें उन लोगों को समझ नहीं आई कि एक चीज वो 1000 रुपए के ऊपर एक चीज फ्री दे रहे थे, तो एक दो जो यूजर थे उन्होंने चीजें खरीदी हैं, तो उन्होंने फिर हमें व्हाट्सएप किए हैं कि भाई ये हमें तो एक चीज मिली है, दो चीजें नहीं मिली फ्री। तो फिर मैंने कल बात की थी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, उन्होंने कहा भाई हमसे मिस्टेक हो गई है। तो जो लोग भी मंसूर जनरल स्टोर से 1,000 रुपए की खरीदारी लेके गए हैं और उनको एक चीज मिली है, तो वो दूसरी जरूर जाके वहां से ले लें। ठीक है जनाब, जो हमने आपके साथ कमिटमेंट किया वो, और उसके ऊपर 10% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। जी हमारे एक बहुत ही प्यारे लिसनर हैं जनाब अब्दुल्ला अंकल, आ चुके हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या हाल है अब्दुल्ला भाई, ठीक हो तुसी? क्या गर्मी है? अब्दुल्ला आपकी बातें बड़ा मजा करती हैं, लेकिन इस वक्त जो है आपकी आवाज की समझ नहीं आ रही है, जगह चेंज करेंगे थोड़ी सी? अच्छा जी, एक मरतबा चेंज कीजिए क्योंकि आपकी बात की समझ नहीं आ रही मुझे। और हेलो, हाँ अभी भी शोर है बहुत ज्यादा, थोड़ी सी मुकम्मल तौर पर जगह चेंज कर ले आप, ताकि इस वक्त जो है सिर्फ डेरा तो आपको नहीं सुन रहा था ना, सारे लोग जो है अपने कान इस तरफ मुतवज्जे हैं, पूरा टांग, पूरा पहाड़पुर और पूरा साथ में डेरा इस्माइल खान, तो आपकी बातों की समझ तो आए ना हमें। जी जनाब, तो ये जो बात मैं कह रहा था वो आपको समझ आ गई है कि अगर आपने मंसूर जनरल स्टोर से 1,000 की खरीदारी की है और अगर आपको एक गिफ्ट मिला है तो आप वहां पर जाएं, आपको दो मिलेंगे और 10% डिस्काउंट भी करके देंगे। असल में उनके बहुत सारे काम हैं तो बेचारों को याद नहीं रहता, केसन तो हर रोज पॉलिसियां देगी नई नई, तो शायद आज तक किसी कंपनी ने इस तरीके से कोई वहां पर इनिशिएटिव नहीं लिया, तो हम तो लेते रहेंगे। खैर उनको फिर हमने बता दिया कि आप फिर से लोगों को, अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो खैर आप फिर से लोगों को पहुंचा दें, यानी कि अगर कोई आता है लेने के लिए तो आप उनको चीजें दे दें। ठीक है जनाब, आप लोगों के मैसेजेस जो है वो भी आए हुए हैं, उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, आप लोगों की कॉल्स भी आ रही हैं। तो भाई आप लोगों को ये बताते चलें कि केसन का ये जो क्रीम है ये छाइयों को ख़त्म करने के लिए है, लेकिन साथ में मैं आपको बताऊं कि जो लोग अपनी स्किन का एक रूटीन में ख्याल रखते हैं ना, रूटीन में जो लोग ख्याल रखते हैं उनको कभी बड़े बड़े खर्चे नहीं करने पड़ते, ना ही डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, ना ही कोई बड़े मसले उनके साथ होते हैं। ये उन लोगों के साथ मसले आते हैं जो अपनी केयर नहीं करते हैं। ठीक है जनाब, यानी कि ना ही रेगुलर फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, ना ही रेगुलर स्किन टोनर का इस्तेमाल करते हैं, ना ही फेयरनेस क्रीम का, ना ही सन ब्लॉक टाइप कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई ये चीज़ें कुछ लोग खवातीन का यही मसला होता है कि छाइयाँ ख़त्म होने के बाद वो सब कुछ छोड़ देती हैं, वो कहती हैं कि बस क्रीम ख़त्म हो गई, छाइयाँ ख़त्म हो गई, तो बस फिर उसके बाद फिर छाइयाँ निकलती हैं। वजह क्या होती है कि दिन की जो रोशनी होती है, जो सूर्य की शुआएं होती हैं, वो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से आपकी छाइयां फिर से वापस आ जाती हैं। ठीक है जनाब, तो अगर आप डे टाइम में आप कोई भी क्रीम इस्तेमाल करते हैं, हमारी करते हैं, किसी और की करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने आपको नहीं बताया हुआ तो आपके साथ ज्यादती की हुई है। जो भी क्रीम है जब आप रात को इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या कहते हैं, उसका फॉलो अप डे के वक्त जरूरी होता है। ठीक है जनाब, उसमें आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल जरूर करेंगे, जिस तरह के हमारा केसन का ब्यूटी स्प्रे है, हम कहते हैं कि आप हमारा ब्यूटी स्प्रे डेली इस्तेमाल करें, स्पेशली गर्मियों में तो हम कहते हैं ये फर्ज कर लें अपने ऊपर। 200 रुपए का हमारा स्किन टोनर है, अर्के गुलाब विटामिन सी है, विटामिन सी जो होता है ये नेचुरल सन ब्लॉक है। ठीक है जनाब, ये नेचुरल सन ब्लॉक का काम करता है और अर्के गुलाब आपकी स्किन को ठंडा रखता है। तो गर्मियों में स्किन टोनर जो है उसका इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। भाई अपने ऊपर फर्ज कर लीजिए कि जनाब स्किन टोनर केसन का जो ब्यूटी स्प्रे है इसका 2 दफा इस्तेमाल करना ही करना है। ठीक है जनाब, सुबह उठकर जब मुंह धोएंगे, फेस वॉश करेंगे या साबुन से मुंह धोएंगे, इसको इस्तेमाल करना है, और रात के वक्त ये शाम के वक्त भी 2-3 दफा इस्तेमाल करें, दिन में 2 दफा करें, रात को सोते वक्त जब क्रीम लगाने लगते हैं तब भी फेस वॉश करके, जब भी फेस वॉश करें, जब भी साबुन से आप अपने चेहरे को धोएं, तो जनाब उसके बाद स्किन टोनर का इस्तेमाल करेंगे, कभी भी छाइयां आपकी वापस नहीं आएंगी। आज ये बात आप लिख के रख लें अपने पास, ये वाली बात आप अपने पास लिख लें कि अगर आपकी छाइयां खत्म हो गई हैं और उसके बाद आपने स्किन टोनर को नहीं छोड़ा, यानी कि छाइयां खत्म हो गई लेकिन दिन के वक्त आपने अपने ऊपर फर्ज कर लिया है कि स्किन टोनर को इस्तेमाल करेंगे, तो कभी भी छाइयां वापस नहीं आएंगी, कभी भी दाग धब्बे वापस नहीं आएंगे। ये तब होता है जब आप डे टाइम की ट्रीटमेंट छोड़ देती है और उसके बाद ये सारे मामलात फिर से, इसलिए हमने नाइट बंडल बनाया हुआ है। ठीक है जनाब, आप लोगों को बांधने के लिए कि भाई आप इधर उधर ना जाएं, हमने नाइट बंडल, केसन का नाइट बंडल, जिसके अंदर जाफरानी क्रीम, زعفرانی سوپ اور ساتھ میں بیوٹی اسپرے ہوتا ہے. یہ تین چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں, یہ آپ کو 600 روپے کے ملیں گے. ویسے ان کی قیمت 750-800 روپے بنتی ہے اگر آپ علیحدہ علیحدہ لیتے ہیں, لیکن یہ نائٹ بنڈل آپ کو جو ہے 600 روپے میں بازار سے ملے گا, 650 ملے گا زیادہ سے زیادہ, یا 600 میں مل جائے. کیسن شاپ سے 600 کو آپ کو مل جاتا ہے, جس کے اندر بیوٹی اسپرے بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے جناب, جس کو ہم اسکن ٹونر کہتے ہیں, زعفرانی کریم یا ملکی سوپ ہوگا اور ساتھ میں زعفرانی کریم بھی اس کے اندر موجود ہوگی. تو یہ ایک کمپلیٹ پروفیشنل کٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں 3-in-1 پیک, کیسن کا 3-in-1 پیک, اور اس کا نام ہے کیسن نائٹ بنڈل. یہ علیحدہ بھی ملتے ہیں ساری چیزیں, بیوٹی اسپرے آپ کو علیحدہ بھی ملے گا, کریم بھی علیحدہ ملے گی, اور سوپ بھی علیحدہ سے بھی ملے گا. لیکن جب آپ یہ بنڈل اکٹھا خریدتے ہیں تو اس میں ہم آپ کو بچت دیتے ہیں, ٹھیک ہے جناب. تو یہ 600 روپے کا آپ کو تین چیزوں کا ایک بنڈل ملے گا, یہ ایک باکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے جناب, جس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں. اور جب دکاندار سے مانگیں گے تو دکاندار کو بولیں گے کیسن کا نائٹ بنڈل دیں, ٹھیک ہے جناب. بہت ہی پاپولر ہماری یہ پروڈکٹ ہے کہ جس کے اندر تینوں پروفیشنل جو طریقہ کار ہے چھائیوں کو ختم کرنے کا, جو پروفیشنل طریقہ کار ہے وہ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جناب صابن سے چہرہ دھوئیں, پھر بیوٹی اسپرے لگائیں, پھر کریم کا استعمال کریں, پھر صبح اٹھ کر صابن سے چہرہ دھوئیں, بیوٹی اسپرے کو استعمال کریں, دن میں 2 دفعہ چہرہ فریش رہے گا, ٹھیک ہے جناب, اور چھائیاں واپس نہیں آئیں گی. السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے؟ میں ہوں شاداب شکور فرام آزاد کشمیر. کب سے بیتاب ہیں آپ کا پروگرام سننے کے لیے؟ او مائی گاڈ. اچھا جی, آپ مجھے سن رہے ہیں اس وقت کہاں پر؟ آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر میں ابھی تک ہم نے کوئی ایف ایم لیا نہیں ہے, ویسے ہو سکتا ہے آپ فیس بک سے سن رہے ہوں ہمیں. اور جناب السلام علیکم کے ٹی اے, کیسے ہو؟ اردو والی مہنور ہوں میں. کیسن پہ ایک دو بات کیا لکھوں, دل کرتا ہے کیسن پہ پوری کتاب لکھوں, اور میں تو کیسن ہیئر کیئر جوڑی کی پوری دیوانی ہوں. جس طرح سے میرے بال بڑے ہیں ماشاء اللہ, میں کیا کہوں. یہ جناب یہ 18 سال کی لڑکی ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بال ہم نے تو نہیں دیکھے ان کے, لیکن ماشاء اللہ خود کہہ رہی ہیں کہ جس طریقے سے میرے بال بڑے ہیں. میں کل بتا رہا تھا کہ مہنور بہت زیادہ ہماری جو ہے کیسن جوڑی لے کے جاتی ہیں, ہیئر کیئر جوڑی جس کے اندر اور آئل اور شیمپو دونوں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جناب. اور جیسے کہنے ہیں کیسن کی ہر ہیئر کیئر جوڑی, کیا کہنے ہیں کیسن کی ہیئر کیئر جوڑی کی؟ اور اروبا الحمدللہ میری لائف اچھی جا رہی ہے, تم سناؤ تم کیسی؟ اروبا بہت مس کیا ہے تم کو اور تمہاری باتوں کو, اور انیسا کو, اروبا کو, اور سب کو میرا سلام.
2: کپل سلیوشن, بس ایک سلیوشن.
0: اب یہ ہیں مہنور, اردو والی مہنور.

0: हर पल काटा।
1: मूसा वाली से पिपला, मूसा वाली पिपला से हकीकत जिंदगी चलने दो, पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे दूसरा पीछे, मगर ना आगे वाला गरूर महसूस करता है ना पीछे वाला तोहिन, क्योंकि दोनों जानते हैं कि पल भर में इनकी जगह बदलने वाली है। बस इसी का नाम जिंदगी है। सब लिसनर्स को मोहब्बत भरा बहुत प्यारा मैसेज। हमजा किम डका जी बहुत शुक्रिया। दिलराज सुन रही हैं, दिलराज टांग से हमारे साथ हैं, कहते हैं कि वेट कम पेट। वेट कम की कीमत कितनी है? I am Dilraj from Tanga.
0: Anti-acne face wash and soap.
1: जी जनाब, वेट कम पेट कम दो पैकिंग में मौजूद है। एक है 15 दिन वाला जिसकी कीमत है 400 रुपए, और दूसरा है 700 रुपए वाला जो एक महीना चलता है। ठीक है जनाब, वेट कम पेट कम जो चर्बी पिघलाने वाली हमारी प्रोडक्ट है, 15 दिन वाला जो जार है वो आपको मिलेगा 400 रुपए का, एक महीने वाला जो है आपको 700 रुपए का। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने 2 चम्मच रोजाना लेने हैं वेट कम पेट कम के, और 15 दिन के अंदर आपका वजन कम होता हुआ नजर आएगा। आप सोच रहे होंगे कितना कम होगा, तो भाई आपका 2.5 से 3 किलो 15 दिन के अंदर, और माइंड के अंदर रखें कि 4 से 6 किलो जो है एक माह के अंदर। ये हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं और हमें हमारे साथ फीडबैक शेयर करते हैं, तो उनके मुताबिक बता रहे हैं कि जनाब 15 दिन के अंदर तकरीबन आप 2.5 से 3 जो है किलोग्राम चर्बी आपकी पिघलेगी, और एक महीना 4 से 6 केजी तक आपका ये, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो हर बंदे के ऊपर उनका जो रिजल्ट होता है वो मुख्तलिफ होता है, एक जैसा नहीं होता। ठीक है जनाब, इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है तो आप सिंपल पानी के साथ आपने लेना है, नीम गर्म पानी लिखा होता है, लेकिन आजकल गर्मियां हैं, पानी वैसे ही नीम गर्म होगा। ठीक है जनाब, तो ऐसे 1 चम्मच आपने मुंह में डालनी है। ठीक है जनाब, बहुत ही खुश जायका किस्म की ये फकी है, और ऊपर से आपने 1/2 गिलास पानी का डाल लेना है रात को खाने के बाद। ठीक है जनाब, जैसे आप रात को खाना खाते हैं तो खाने के तकरीबन 1/2 घंटे बाद आपने 1 चम्मच इस्तेमाल करना है, यानी कि 2 दफा टोटल आप जो है 2 चम्मच रोजाना इस्तेमाल करना। अस्सलाम वालेकुम भाई, कब से आपका नंबर मिला मिला कर मिल ही नहीं रहा भाई, क्या करूं मैं। और ये कौन है, दूबा बलोच है जनाब पंजाब से, कहते हैं कि हाथ थक गए हैं, कॉल नहीं मिल रही। तो जनाब मैंने भी थोड़ा सा इसको रेस्ट के ऊपर रख लिया था, क्योंकि मैंने कहा भाई हाँ जनाब
0: ऑयल एंड शैम्पू बालों का मुख्य,
1: कहते हैं कि आरजे नुमान शेख को बोलो कि 88.4 टांग पर भी शो किया करे प्लीज। कोई फैन है उनकी, या फैन है, हो सकते हैं मेल है या फीमेल, नाम नहीं लिखा हुआ, कहते हैं कि वो भी शो किया करें, तो जनाब उनकी मर्जी है, उनकी कंपनी है जनाब, उनका जब दिल करेगा तो वो भी अपनी कंपनी के साथ करेंगे। जिस तरह हम आ गए हैं टांग में, तो इसी तरीके से नुमान शेख भी, अगर उनको जरूरत महसूस होगी तो जरूरी बात है कि वो भी आएंगे। तो जनाब इस वक्त आप कॉल कर सकते हैं, तुबा कॉल कीजिएगा अभी 03449363366, 03449363366। जी जनाब, केसन का प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, केसन टी टाइम, और हम कहते हैं जिस तरह लाजवाल हैं हीर रांझा लैला मजनू की जोड़ियां, उसी तरह लाजवाल है केसन की केसन जोड़ी।

0: जी जनाब, ओकेजन जोड़ी कितनी जबरदस्त है। हाँ जी, ताहिर हाफिज आबाद 97.4 से वेलकम करेंगे जनाब। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। हालो खलील भाई, की हाल है?
0: करम है, अल्लाह तो सही। हाफिज साहब, तुसा सुनाओ, ठीक? अज साहब,
1: बात मैं साहब रेडवान की थी, मैं के खलील भाई तो घंटी

0: ਕਰੋ ਚਾ
1: ਚੰਗੇ ਆਖਰੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕੂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੇ ਹੈ ਸਹੀ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰਾ ਸਾਹਿਬ 24 ਘੰਟੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਨਾ ਆਸ ਕਿਤਰਾ ਫਸਾ ਸ਼ਸਲ ਇਹ ਕੀਤੇ ਸੇ ਹੁਣ
1: ਅੱਛਾ ਚਲੋ तीनों रेडियो स्टेशन से आप हमें सुन रहे हैं और तला किंग कह रहे हैं कि बॉस अगर सईदुर रहमान सुन रहा है तो उनसे कह दें, क्या कह दें जनाब, क्या कह दें कि मुझे कॉल करे भाई, तला को कॉल करो।
2: एक सोल्यूशन केसन शैम्पू द रेवोल्यूशन।
1: जी जनाब, तीनों रेडियो स्टेशन ग्लोबल एफएम 91 डेरा इस्माइल खान, रेडियो पैगाम 97.4 और रेडियो अमन 88.4 टांग से आप सुन रहे हैं जनाब केसन का टी टाइम। टी टाइम में चाय आज मुझे लेट मिली है जनाब। अभी अभी क्या, अभी मुझे आखिरी

0: टी टाइम में चाय आज मुझे लेट मिली है जनाब, अभी अभी के अभी मुझे आखिरी लम्हों में चाय मिली
1: महके हर तरफ
0: पांच। आपने अपनी चाय जो है हमारे शो के साथ जरूर जो है एंजॉय कर ली होगी। आज का पैगाम जो है वो क्या है जी जनाब? आज का जो हमारा पैगाम है वो यही है कि भाई आपकी चायां परमानेंट खत्म हो सकती हैं जब आप जाफरानी क्रीम का इस्तेमाल करें, लेकिन ठीक होने की वजह से जो है बार बार आवाज ब्रेक हो रही होगी, लेकिन बस आखिरी लम्हे हैं और आखिरी लम्हों में जी जनाब हम आपके साथ मौजूद हैं। और अच्छा जी आपकी आवाज रेडियो में सही नहीं आ रही, बिल्कुल जी नहीं आएगी। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कल एक तो फिर से 4 से 5 आपसे मिलेंगे केसन के टी टाइम में। कल तक के लिए इजाजत अल्लाह।

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: Your station.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल ले अवेलाजी सुनत अमल ले
3: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना डेर परेशान आयो और डेर गर्जिदली कड़ीदली डेर गर्जिदली कड़ीदली यो
2: नो बिल्कुल मायूसके गई मां मायूसके गई मां अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नुरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे
3: और द नूरु मालूमातों दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
2: 0319-55-23-404
4: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
5: योर म्यूजिक योर रिक्वेस्ट
6: दिस इज रेडियो स्टेशन रेडियो अमन
7: एंजॉय बैक टू बैक म्यूजिक विद रेडियो अमन 88.4 88.4

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांस की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

कर मेरे चेहरे पर पहले दाने और दाग धब्बे थे। मैंने अपने चेहरे के लिए मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें, एक्ने ट्यूब्स और मुख्तलिफ फार्मूले आजमाए, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अरूसा शॉपिंग सेंटर से एश्मा एक्ने ट्यूब और एश्मा एक्ने सोप लिया। चंद दिन इस्तेमाल के बाद मेरा चेहरा गोरा और दाग धब्बों से मुकम्मल तौर पर साफ हो गया। अब मैं तमाम रेडियो लिसनर्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ, अगर आपने भी अपने चेहरे पर मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें या टोटके आजमाए हों और फिर भी कोई रिजल्ट न मिला हो, तो एक बार जरूर एश्मा एक्ने क्यूब और एश्मा एक्ने सोप आजमाइए। एश्मा एक्ने क्यूब दानों का खात्मा, खूबसूरती।

बिल्कुल ग्रहण अवरोधन को प्रोग्राम चिकम्मा तर 12 बजे पूरे भी ओसपा चिकम्मा दाइवा गाना रसरा गाने न बाद से राजू ने बिल्कुल मुशरा बा आप प्रोग्राम छे चिकम मुरा मैनेजर सेब द नजमान खटक सेब आ बम चिकम्मा दा रातक कई राजीबा नो बिल्कुल दा गाना बरसरा गाने न बाद से राजू ने बिल्कुल मैनेजर सेब बाकायदा दे प्रोग्राम मेजबानी कई और जब हम और सर ना इंशाल्लाह दा प्रोग्राम बतर 12 बजे पूरे शुरू इन तासु बचेरे न जो मुशरा बहोसू।